0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: द न्यूज प्लस।

श्री गणेशाय नमः। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पो जलांगं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं वगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वात्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्वात्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरन्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु।

0: नाम्रो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो नि ढाल्ले छ अनुगमन दुने व्यवस्था चौसर्गी दुए
1: गेछो छाने ला खोरे ल चाउसी खोरिए होलिदे तरिन गाई गेज मेके लाइजु आबो नजिरे बने गेम ये ल गेज मेके नालाले औले लायो के लाइजे
0: वन जंगल छ जुडिसि हो गेम बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा रस चाउसु छिमे ने चाउसो सैले के खेले या
1: वन जंगल नेला दुके माइए नेवला दिकिनी पार
0: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सभा विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: नेलायु माइलका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तक जरुरी सूचना जुमो बेला खेमरी दे गरम ओगोदरी जेउ बेला सुनो खोरी कता ओचोदरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल ने लागिने मस्त ज संभावना ताई आउ ये गिनी प्राकृतिक सम्पदा र त खेत ज स खेमना दे वातावरण मिलेने ल खेपा असर केने रि उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज ताना गे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुनो माखा नामे ल ने लागिने सज जिनी गिनी लापर भाइ सुनो चाउ स खेलगेमा दुख को ठयल नेला कि नाटे जन धनी नै खेता छिपिता उठो खोकाई वन जङ्गल सज मेरा आइरिने बानी एमएल एमए ओछो छानेला लिउसोकर पोतरालै पार्जगे रहतै
1: सलाई लाइटर स्याउला मे सचाउने चिजरालै जबाङजा र यामाडेने पोल गेने या इतौ चिज र रहिदे वन जङ्गल याल के भाबाय
0: पिकनिक वन भोज बाक मे सचाउसु छिन्ने मेले चाउसु सैदे कि खेनाले वन जङ्गल ओछो छान्ने दैके बारी प चुरोद विधि ओरे बनै कोबा
1: नान्थर नाम लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो नि ढाल्ने छ अनुगमन दिने व्यवस्था चौसर्गी दुए
0: गेछो छामेला खोरेल चाउसी खोलिए हरिदे करिम गाई गेजो मेकेलाई जु अब नजिरे बनाए गेम एल गेजो मेके नलागे औले लायो के नाइए
1: वन जङ्गल छ जुडिसी हो घेम बारी ल बाली नाली कुचिउला चिउली झ्याक्रा रस चाउसो छिनी ने चाउसो सहिरे के खेले
0: वन जङ्गल मेला कि गेमाइए लागि किनी पार्सोना खर्नामा मिलिदे भनै चानो छ मे के छ ए
1: बतास उचली जु बेला त हिजिनके कोटल मे के सताकिले हेन ओखेम छिन्नी ने चासो के छ ए
0: ने लागि नि निताई के मने के बचिए सुनो अरुले मने के बच्छ या
1: के छ थामला पोयाल ने लागि के छ किनी के छ त ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालय ल खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: देश सुनसहरी गांव पालिक पांच नारबांग क्षेत्र भीतर पूर्व में मावांग जयमा को सीमा उत्तर में सुनसहरी गांव पालिक सात जेलबांग खिबांग सियारी को सीमा पश्चिम में सुनसहरी गांव पालिक छ ढुंसी को सीमा र दक्षिण में हामजा च्यानधारा क्षेत्र भीतर पर्ने यी चार किल्ला अंतर्गत का सार्वजनिक वन भित्र घास दौरा गर्न जड़ीबुटी संकलन गर्न पात पटिंगर घर घुर्रो लगायत का वन जन्ने सामग्री संकलन नगर्न नगराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अर्को सूचना न आउन्जेलसम्म वन क्षेत्र भित्र प्रवेश निषेध गरिएको सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराइन्छ। यदि यो सूचनालाई व्यवस्था गरी वन क्षेत्र भित्र प्रवेश गरेको पाइएमा प्रचलित वन ऐन अनुसार कार्यवाही गरिने कुरा सबैमा जानकारी गराउँछौ।
1: अध्यक्ष पूर्ण घरती मगर अर्जुन, उपाध्यक्ष स्मृति थापा, सचिव नरूपुन मगर, कोषाध्यक्ष देविका बुढा मगर एवं सम्पूर्ण टोल विकास समिति सुनसहरी गाउँपालिका पाँच नार